एक पलक झपकने कितनी देर लगती है, लेकिन फर्म बर्दारी की इंतहा। मलकुल मौत इज़राइल जो नाम है सही से किसी से हदीस में साबित नहीं है, जो कुरान मजीद में सुन्नत में जो सही अल्फाज आए मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, और उसका काम है कि रूह को निकालना। ये चार सबसे बड़े फरिश्ते हैं, और चारों का जो ताल्लुक है वो जिंदगी से, दिलों की जिंदगी वही है, दुनिया की जिंदगी बारिश है, और आखिरत की जिंदगी सूर फूकने के बाद आएगी, और मौत का फरिश्ता इस दुनिया की जिंदगी को ले लेता है, खत्म कर देता है। फिर बाज ऐसे फरिश्ते हैं जो जुमे के दिन दरवाजों पे खड़े हो जाते हैं और उन लोगों के नाम लिखते हैं, दर्ज करते हैं जो मस्जिद में दाखिल होते हैं इमाम के आने से पहले, इमाम के मिंबर पे खड़े होने से, सलाम कहने से पहले, और जो बाद में आए वो बेचारे महरूम हो गए और उनका नाम जो है जुमे की लिस्ट में नहीं है, जुमे के जो अजर सवाब उससे महरूम हो गए। बाज ऐसे फरिश्ते हैं जो इंसान की हिफाजत करते हैं, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, अल्लाह मुकर्रर कर दिए हैं। बाज ऐसे फरिश्ते हैं जो जिनके सिर्फ एक ही काम है, वो ये है कि देखते अल्लाह का जिक्र कहां पे हो रहा है, वहां पर आते उस मजलिस को घेर लेते हैं और सातवें आसमान तक, दुनिया के आसमान तक घेर देते हैं और ऊपर रहम और मगफरत की दुआ करते रहते हैं। और बाज ऐसे फरिश्ते हैं जिनको सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया कि जब दरूद कोई मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे तो वो दरूद मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। तो फरिश्ते एक अजीम मखलूक हैं, याद रखें फरिश्ते मखलूक हैं, खालिक नहीं है। ये अकीदा गलत है, बाज लोगों का अकीदा के फरिश्ते मौजूद ही नहीं, कुफर है। जिसने का ये ईमान है कि अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह ताला रब है, वाहिद महबूद है, अस्माउ सिफात में, लेकिन फरिश्ते नहीं है तो वो काफिर है। अरकान ईमान पूरे के पूरे ईमान लेके आना चाहिए, जितने भी छह अरकान ईमान है, वरना कलमा तौहीद का फायदा नहीं है। और जिसने एक फरिश्ते को झुटला दिया कि जिब्रील फरिश्ता नहीं है, वो दार इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद झुटलाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिब्रील फरिश्ता है, कुरान मजीद ने पूरे शख्स झुटला दिया कि जिब्रील फरिश्ता नहीं है। तो जिसने जिसका यह अकीदा फरिश्ते मौजूद नहीं है, बातिल अकीदा है, कुफर है। जिसने ये तो मान लिया कि फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन फरिश्ते ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते इबादत के लायक है, सिरा तारीख इसकी नफी किया कुरान मजीद में। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला इन्होंने हमारी इबादत नहीं की, इन्होंने जिनों की इबादत की है, हमारी इबादत नहीं की इन्होंने। तो फरिश्ते इबादत के लायक नहीं है, इबादत में सिर्फ एक ही जात है, वह अल्लाह ताला। फरिश्ते बेटियां नहीं अल्लाह ताला की, बल्कि यह अकीदा है फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यह काफिरों का अकीदा था। बाजरों को यह अकीदा है कि फरिश्ते गलती करते हैं, भूल जाते हैं, फरिश्ते गलती नहीं करते। जैसे राजों का यह अकीदा है कि असल वही जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिबी अलीसलम को, सैदन अली पर ही वही नाजिल कर, वो नबी थे, तो जिबी अलीसलम भूल गए और वही नाजिल की मोहम्मद सल्लम पर। फरिश्ते भूलते नहीं है मेरे भाई, कभी नाफरमानी नहीं करते। और हारूत मरू के कस्से में ताज्जुब होता है, बाद लोग ये समझते हैं कि ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें नाफरमान की अल्लाह ताला ने उनको सजा दी है। मेरे भाई इसी आयत में सूरह बकरा नंबर 102 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो है ये फरिश्ते जो है ये इम्तिहान है लोगों के लिए, अल्लाह ताला पैदा इम्तिहान के लिए किया है, नाफरमान नहीं है, फरिश्ते कभी नाफरमानी नहीं करते। बाज लोगों का यह अकीदा है कि फरिश्ते औलिया की खिदमत के लिए नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते औलिया की खिदमत के लिए, यह तो तब हमें मालूम होता है जब वही दरवाजा खुला होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, आसमान की तरफ देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पूरे आसमान को ढांक लिया, उनके ऊपर से आसमान नजर नहीं आ रहा, इतनी अजीम मखलूक है जिब्रील अलैहिस्सलाम, और उनके 600 पर थे, सिर्फ एक पर जमीन पर मारा, कौम लूत की 7 बस्तियां थी, 7 पर एक पर जमीन पर मारो, 7 बस्तों को उठा लिया और इतनी बुलंद ले गए। एक रिवायत में आया है कि फरिश्तों ने उनकी आहो पुकार को सुना और उन्होंने फरिश्तों की तस्बीह को सुना, वो फिर जमीन पर आकर धसा दिया। आज डेड सी का इलाका जो है बहर मई जिसे कहते हैं, ये वो इलाका है, आज तक जरखेज तो दूर की बात है, जो पानी निकला है उसमें कोई चीज जिंदा रह नहीं सकती,

क्या है? रमी करना, बाल मुंडवाना, तवाफ। ठीक है, सही तो अलग है, लेकिन इन तीन या चार चीजों में से जिसने दो कर लिया तहल्लुल अव्वल उसको हो गया, कुर्बानी का ताल्लुक तहल्लुल से नहीं है। ठीक है, और जिसने सारे कर लिए तो पूरा हलाल हो गया। अब तहल्लुल अव्वल किसी शख्स ने कंकर मार लिया 10 तारीख को, बड़े जमरा को, और सर के बाल भी मुड़वा लिए, अब आधा हलाल हो गया वो, इसलिए तहल्लुल अव्वल पहले तहल्लुल आधा हलाल हो गया। इस सूरत में अगर उसने बीवी से हम बिस्तरी कर ली या बोसो कनार हो गया, इस पर क्या है? शेख साहब फरमाते हैं कफीदियत अल अदा सबिका, वही जो अभी बता चुके हैं, तीनों में से एक देगा। ठीक है, पहला तहल्लुल हो चुका है, आधा तहल्लुल हो चुका है, क्या होगा उसका? ये जो अभी बताए तीनों में से एक फिदिया होगा। तीनों में से क्या है? 3 दिन रोजा रखे, या 6 मिसकीन खाना खिलाए, या 1 बकरा ज़िबह करे, जो उसके लिए आसान हो। फिदतुल जिमा फिल हज कब्ल तहल्लुल अव्वल, ये मसला है। किसी ने अगर तहल्लुल अव्वल से पहले जिमा कर लिया बीवी से, तो उस पर क्या हुक्म है? फिदिया क्या है उसका? बदन ऐ नाका, यानी एक ऊंट ज़िबह करेगा। फइन लम यजिद, अगर वो नहीं पाता, فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله ويفسد حجه ويجب عليه أن يكمله ويقضي في العام القادم. أي देखते हैं क्या चीजें हैं? बदना, वहां पर बकरी, यहां पर ऊंट है, और सियाम की जगह जो है, अगर वो इसके पास नहीं है तो 3 दिन रोजा रखे हज में, और 7 दिन जो है वो जब घर वापस लौटाए, तो उसे बेसमीन का मौकफ है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका फिदिया और हदी का आपस में फर्क है। ठीक है, तो इसे अंडरलाइन कर लें, यानी यह हुक्म मौजूद नहीं है। वेफ्सिद हज, उसका हद फासिद हो जाता है, हद फासिद हो गया उसका, हज फासिद हो गया। वजब अली उकमिल हो, उस पर वाजिब उसे मुकम्मल भी करे, सजा है उसकी। वह कजी फिल आम अलकादिम, और अगले साल से वो उसे उसके कजा भी करे। कितनी चीजें? सबसे पहले तौबा करेगा, सबसे पहले। नंबर 2, एक ऊंट ज़िबह करेगा। नंबर 3, उसका हद फासिद हो गया। नंबर 4, उसे मुकम्मल करेगा, यानी कि फासिद छोड़ के चला जाए, नहीं, जो बाकी हज के दिन हैं मुकम्मल करेगा। नंबर 5, अगले साल से या जितनी भी जल्दी हो सके अपने इस हज को कजा करेगा, उसका हज अभी तक हुआ नहीं है, उसकी फर्जियत अभी बाकी है। और इसके दिल सैयदना अली बिन अबी तालिब अन्हु से यह असर साबित है। सैयदना अली अन्हु ने यह फतवा दिया है, जिसे अगर कोई शख्स अगर अपनी बीवी से जमा कर ले तहल्लुल अव्वल से पहले, और अगर हज मुकम्मल करे, और 5वां अगले साल से उसे कजा करे, फिदतुल जमा फिल उम्रा, उम्र की हालत में अगर कोई जमा कर ले, शाह 1 बकर जिबा करना, क्योंकि इसमें तहल्लुल तो होता नहीं है, पहला दूसरा है कि तहल्लुल होता है, किसी से अगर हो गया तो उसका उम्रा जो है फासिद हो जाएगा, और वो 1 बकर ज़िबा करेगा, और फिर गुनाह भी है, वो तौबा भी करेगा, और फिर वो उसे मुकम्मल भी करेगा, और फिर वो उसे कजा भी करेगा बाकी अहकाम वैसे के वैसे। क़िस्म उस्तरह, तीसरे क़िस्म में यहां पर बंदूकें बनी हुई है आपके सामने तस्वीर में, फिदिया तो क़त्ल सईद, शिकार करने का फिदिया जो है, इनकान सईद लहू मिसल। नंबर 1, अगर शिकार की मिसल है, जो शिकार किया गया है उसकी कोई मिसल नजर आती है, फयुखय्यर बैन इखराज अल-मिसल अव तक़ूम बिदराहम यश्तरी बिहा ताआमन वक़्सम अत्ताआम अमदादन। किसी ने इहराम ख्याल में शिकार किया है, अब इसको ऑन कर दे, मेरा ख्याल है, चल गया जी। जो शिकार होता है वो 2 किस्म का होता है, एक ऐसे शिकार जिसके नंबर बदल होता है, मिसल होती है, दूसरा वो जिसकी नंबर बदल नहीं होता। अगर कोई शख्स ऐसे शिकार के जिसके नंबर बदल है, जिसकी मिसल कोई है, तो फिर वो उस मिसल को फिदिया दे दे। कबूतर है, जिसे कबूतर का शिकार किया है,